आयोजक दिदी बहिनी मिडिया हाउस स्टार एटी इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 9856 3001।

आयोजक दिदी बहिनी मिडिया हाउस स्टार एटी इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 9574301।

0: आयोजक दिदी बहिनी मिडिया हाउस स्टार एटी इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 98573301
1: निकटमा दिदी बहिनी विकटमा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: बीबीसी नेपाली सेवा।